0: क्लास तुम कवा भी
1: रिफा म्यांस नुल्ला नुना टीम्यासा अंतिक्यां सया आर मनां प्यासे आन रतेरे का देते तंबोप शिक्या दिमनुना निफितुन्द्रान आर जन मनुना निफितुन्द्रान सान्या टीम्यास फात्म्यात से जकूर फाम्यासा आम फापंसुना आर म्यासा न्यापंदिया निफितुन्द्रान मतेत क्या मायनों ने बात क्यान फरानिस नांगना आरनिस नताक एंतिफना फोसांतिया रानिस फोलुआने कोलोनेल मिकाएला फारुआन मालाकास मेरा मेंजा अरसा चिके नुम्तेने जान चिशा बकनियां दां जान चिशा बकनिस लुटेन जान या फसान मसावा जान तोम ततार एंतिफिरेन एंति कदेमानो आंचा बंस्केरे टरेट Tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity firenena ity. Tsy mora zany, sarotra zany, kanefatsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina, miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka, ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.